0: I'm very, very proud of you, and I think many more to come.
1: Thank you, Krish.
0: Definitely.
1: Many more to come के लिए क्रिश जी हमें शायद ऑकलैंड या ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाना पड़ेगा. क्या सोच है आपका उसके बारे में?
0: आप देखो, हमारा तो दिल लग गया है क्राइस्टचर्च में ना, और फिर क्राइस्टचर्च में अगर हम छोड़ के जाएंगे, फिर हमने इतने सारे जो गार्डन में वेजेस बो कर रखे हैं, दिलीश अलिया को बोलना पड़ेगा कि आके पानी डालो. हमारी प्यारी रॉबर्ट अन्ना और हमारी प्यारी लोरिन जी को छोड़ के जाना पड़ेगा. ऐसे कैसे कर सकते हैं?
1: दिलीश जी शायद भूल गए कि उनकी बहन भी यहाँ बैठती है. पिछले एक महीने से आई एम सीइंग के सिर्फ आपके लिए आता है मैसेजेस, बट शायद प्यार आपके साथ है. प्यार तो भाई जरा आप ये भी याद रख लो कि आपकी बहन भी यहाँ बैठी है. ठीक है,
0: रंजीवन राजू आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं. अच्छा लता, हाउ आर यू? हाउ आर द किड्स? होपफुली ग्रोइंग अप वेरी फास्ट, एंड यू नो अगले इवेंट में हम डेफिनेटली मिलेंगे. अच्छा, भी फैमिली की तरह है. यस, डेफिनेटली फैमिली. पर चले, हमारे जो अच्छे प्यारे और दुलारे स्पॉन्सर्स हैं, इनको हम याद कर लेते हैं. सो इको ट्रेवल्स, जी हाँ, याद रखिए प्यारी रोबोट अन्ना. यहाँ से प्यारी आपको बोलने मतलब रोबोट अन्ना याद आ गए. और इको ट्रेवल्स, याद रखिए, हम जब भी कहजे क्राइस्टचर्च से बाहर स्टेप करते, द मोमेंट वी टच अवर लगेज बैग, वी एक नाम जो हमें याद रखता है, इको ट्रेवल्स. इनके जरिए हम दुनिया ट्रेवल करते हैं, और आप भी अगर जाना चाहते हैं.
1: एंड इको ट्रेवल्स ऑल्सो हैव सम गुड न्यूज कमिंग, जो चेना जी ने हमसे कल ही शेयर किया है, बट वंस द अनाउंसमेंट इज आउट वी कैन शेयर इट विद यू. जुलाई में हम एक छोटा सा हॉलीडे कर रहे हैं, वो भी एवरीथिंग प्लान बाय इको ट्रेवल्स. सो इफ you are planning for a holiday for anything, eco travels is the name. That's okay dil. I think hame bhi india jaane ke baad jab hum india mein hum show nahi dekh paaye, par yahan aane ke baad jab dekha, hame bhi lagta hai shayad ke j mein se j ko nikal dena chahiye, kyunki k kafi achhi tarike se show kar rahe.
0: Pressy, hi sigamano, pressy millennialo. Welcome to our show. And then jibhi chale aage badhte hain, inka bhi abhi, I think inka ek branch idhar Christchurch ke sath sath Auckland mein bhi, and इमिग्रेशन, और बहुत लोग हमसे पूछते हैं जहां पर उन्हें इमिग्रेशन की एडवाइस की जरूरत पड़ती है.
1: जी, स्पेशली वीजास, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा नए वीजास आने लगे. आपको बताया क्रिश जी, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट वीजा के अलावा पेरेंट्स के लिए दूसरा भी वीजा आने लगा है. सो अगर आपको वीजा का कोई भी क्वेश्चन हो री इमिग्रेशन, देव कंसारा जी को जरूर कॉन्टेक्ट करना. फिर हमारा चेहरा जरा देखो, हमसे काफी लोग हमारे स्किन केयर के बारे में पूछते हैं, बट गाइस ऐसा ग्लो चाहिए तो गेट इट टच्ड.
0: और अगर ऐसा ग्लो चाहिए तो
1: get it touched. Exactly. Touch. Go to touch and glow is what we are saying.
0: Yeah, okay.
1: क्या कहा हमने? आप पहले अपना वो, यार आप

0: आजकल अपना वो फेयर एंड लवली और वो फेस पैक और वो सारी चीजें,
1: आप एक बड़े से बोर्ड में लगा को लोगों को बता दो कि पहले मैं बहुत ज्यादा फेयर एंड लवली दोस्तों,
0: मेरे ख्याल से देखो,
1: मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 46 पद्मा आंटी नमस्कार, आल्सो पार्ट ऑफ रामायण,
0: नमस्कार
1: जी जी, लोरिन जी का मैसेज है,
0: Archil ji ka bhi aaya, looking beautiful as always. Thank you so much. Lauren ji kare, Krish, another news. Robert is sitting in the New Zealand Taxi Federation Board. Another milestone achievement. Wow. Awesome. And Lauren ji, as we said, this only comes from hard work and dedication. So, well done. Pitch veno, I'll give you instead of amma. Ayyo venda e, inki madhi aayi rikiwa. Dhara ji, kaise hai? Aap aise Dhara, radio, humara radio ke jo local.
1: Aapke jaane ke baad, bahut saare log aakar. हमारे साथ दोस्ती हो चुकी है, आप तो है तो नहीं आते थे, आते नहीं नहीं लाइक मुझे क्योंकि मैं अकेला बैठा होता था ना
0: जी, तो कंपनी
1: हमने बताया नहीं, पर पहले दो शोज हमने बहुत रोया है पर बैठकर, आई क्राइड, तो धारा जी है और दिलीश आलिया मुस्कान जी है, सारे आते थे भी, मुस्कान धारा जी आप मुस्कान को भी टेक कर दीजिए पर एनीवेज जी जी हम आगे बढ़ते हैं, यस जबकि हम इनके बारे में बात ही कर रहे हैं, यहाँ हमारे साथ हैं एमसी केया एनजेड मनीष कम्युनिटी केया, जैसा नाम इनका सजेस्ट करते हैं, सिर्फ यही नहीं क्योंकि देखो बिजनेस रन करना एक और बात है, फिर अपने कम्युनिटी के लिए जेन्युइनली चीजें करना कुछ और बात है, व्हेन वी अप्रोच देम दे वर लाइक नहीं हमें गुप्त वो करना है, नो नो नो सीक्रेट डोनेशन, यू नो वी वांट यू टू बी द पार्ट ऑफ, सो लॉरिन,
0: सो लॉरिन जी थैंक यू सो मच, जैसे कहा कि आप अपना नाम नहीं चाहते थे वहां पे, बट थैंक यू सो मच के सारे स्पॉन्सर्स आ गए थे उसके बाद भी, आपने लास्ट मंथ ही हमारे साथ रामायण ज्वाइन किया, सो थैंक यू सो मच, एंड हम काफी एक्साइटेड है ये जो जर्नी है रामायण का आप सबके सामने स्टेज पे प्रेजेंट करने के लिए, 4 महीने ही बचे हैं, पूरी क्रू काफी हार्ड वर्क कर रही है, सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट लॉरिन जी एंड रॉबर्ट जी,
1: जी आगे बढ़ते हैं, नैथन मिगलानी स्क्विरल साउथ आइलैंड, इसके साथ साथ आरी वेन्स, आपको भी अगर मोगज के फिल्म में कुछ भी एडवाइस की जरूरत है तो एनजेड सॉरी स्क्विरल मोगजेस साउथ आइलैंड जरूर नाम याद के, और नैथन या आरी आप इनको संपर्क कर सकते हैं, वैसे भी एवरी मंथ ये हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है वी कैन पुट इट थ्रू
0: Once again, Nathan ji bhi Ramayan ka ek chhota sa hissa hai, not as a main sponsor or anything, but something that he is doing for us in Ramayan, which we are really grateful for, and closer to time, we will let you guys know about it. Nilab ji, agar aapko ghar bechna hai, ghar khareedna hai, itna sundar chehra kahan milega yaar? So, if you are looking to buy a house or sell a property, Nilab Najib Harcourts is the name. Shelin, welcome, Shell's product.
1: Having a good sound system is very important, especially if you are doing big massive shows like Shells Media, so next time if you've got an event in Auckland, definitely contact this guy, and I think his Facebook and Insta is Shells Media, right?
0: Auckland or anywhere. So Shells Media Production would look after the whole of your event. Recently I worked with him,
1: we are hoping to see you here, Cheta.
0: Bachcha hai, bachcha. Shells, but yeah, we are hoping to see you in Ramayan. So hope you come and support us as well. And thank you so much for your support.
1: Definitely. Aage badhte hain.
0: King Shells is here. Big fan, sir.
1: और आगे बढ़ते हैं, फेन फेयर इवेंट प्लेनर्स आपका अगला जो इवेंट है जहाँ पर आपको डेकोरेशन की जरूरत है या यू आर लुकिंग फॉर इवेंट प्लेनर, सिल्की थॉमसन ये नाम आप जरूर याद रखिए, फेन फेयर इवेंट प्लेनर्स, और बहुत सारे इवेंट्स अभी क्राइसिस में कर रहे हैं, सो डेफिनेटली फेन फेयर इवेंट प्लेनर्स.
0: हमने मॉर्गेज के बारे में बात कर लिया, घर लेने के बारे में बात किया, चलो अपने हेल्थ के बारे में, ट्रॉमा कवर के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, विच इज सो इम्पॉर्टेंट. कल क्या होगा हमें नहीं पता, सो वी वुड से डेफिनेटली गेट योर इंश्योरेंस ऑडिट. कृषि आपने अपना इंश्योरेंस
1: तो बोला आपका वो पिंक रिबन में जाना है, बच्चे का सोका है
0: सॉकर, इशू का सॉकर है.
1: आप क्यों बोल रहे कि कल क्या होगा नहीं पता,
0: जिंदगी के साथ कल क्या हो जाएगा क्या पता, तो इंश्योरेंस.
1: अच्छा, दिल टूटने का मैंने 2-3 बार ये सवाल किया है क्या,
0: जब से हम इंडिया से आए आप अपने दिल टूटने के बारे में बात कर रहे हैं,
1: जब से आप गए थे किसी ने मेरा दिल जोड़ा ही नहीं ना, ये लोग धारा मुस्कान ये लोग आकर शो देख रहे ना, पर दिल नहीं जोड़ रहे थे.
0: आपने एक स्टोरी शेयर किया था एक छोटी सी बच्ची का जो माइक लेके खड़ी थी और आपने कहा कि टाइम टू रिटायर जीबी जी, तो वैसे जब से हम इंडिया गए हैं ये सिर्फ दिल टूटने के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई आकर इनका दिल जोड़ लीजिए प्लीज. दिलिश ब्रो, यू मे हैव सम सॉल्यूशंस एंड ऑप्शंस, प्लीज गिव इट टू हिम. हाँ, अगर इंश्योरेंस चाहिए तो सॉरी शिवम जी थोड़ा सा भटक गए, एनजेड इंश्योरेंस इज द नेम.
1: जी हाँ, डेफिनेटली इंश्योरेंस बहुत होना बहुत जरूरी है.

0: that net which will catch you just in case if you fall. और हर मंथ वैसे भी हमारे साथ यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, कोई सवाल जवाब है तो डेफिनेटली आप उनको मैसेज कर सकते हैं. चले आगे बढ़ते हैं. जबकि हम रामायण कर रहे हैं तो हमें एक रामायण के साथ साथ when we got married, we wanted somebody जिनको हम ट्रस्ट कर सके. ट्रस्ट इन अ सेंस कि जो जस्टिस कर सके. जब उनके हाथ में कैमरा था, कैमरा इज अ वेपन, जिस तरह से वेपन इन अ सेंस जैसे हमारे हाथ में एक सोल्जर के हाथ में जब गन होता है वो वेपन होता है, उसी तरह से एज अ एमसी हमारे हाथ में.
1: हाँ, क्या एग्जांपल है.
0: आई मीन ही विल डू जस्टिस, ही विल प्रोटेक्ट द कंट्री, राइट. उसी तरह से जब हमारे हाथ में माइक होता है वी नीड टू डू जस्टिस, राइट. हम ऐसे बकवास नहीं कर सकते. अगर बकवास करता तो इतने साल न्यूजीलैंड में घूम घूम के शोज नहीं करते. उसी तरह से जब आपके हाथ में कैमरा आ जाता तो आप बकवास नहीं कर सकते. यू नीड टू डू जस्टिस.
1: एक पे नहीं फोकस कर सकते, राइट. So PP Production is the name for your videography or photography needs. He is the man. So PP Production ka Instagram or Facebook page follow kijiye. Kafi achhe achhe videos aur photos wo post kar rahe. So do go and check him out.
0: Unique itni collection. Aaj bhi hamari inse baat ho rahi thi aur jabki GBJP wapas aa chuki hai. Hum jaakar yahan se inke jo naya place hai jabki ye wholesale move ho chuke hain. We'll definitely go there and do some aur aise outfit aapko chahiye. Chahe simple ho, chahe you know different ho, aap definitely ja sakte hain.
1: Khade
0: ho, bata dijiye. Bata. Maine
1: unique ethnic collection guys for the outfits.
0: Aur iske sath sath okay, hamare paas kuch messages aa gaye. Shanta bhabhi namaskaram. Aur amma is celebrating her birthday. Oh, bahut bahut bahut. That's Moni, meri sister ki mother-in-law.
1: She's celebrating her birthday. So yeah.
0: I mean, hamari taraf se, hum sabhi ki aur se bahut sara pyar aur aashirwad amma tak.
1: Aur janmdin mubarak amma ko hamare taraf se. Please please please amma ko wish kar dena.
0: Ji haan. Sudesh aur Jyoti hamare sath aa chuki hain aur Ravina Chandra JP ji आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. जीबीजी ग्लोबल फ्रेश वीकेंड्स आ जाता है, स्पेशल्स छा जाते हैं जहां पर से फ्रेश फीजी वेजीज आ जाते हैं.
1: फ्रेश फीजी वेजीज चाहिए या केकड़ा चाहिए या कावा का कुछ भी चाहिए.
0: आपको भी केकड़ा मिला ना दो तीन दिन पहले.
1: हाँ, केकड़ा मिला. हमें तो केकड़ा बहुत पसंद है. एंड सल्यूट टू ग्लोबल फ्रेश, उनके पास हमेशा रहता है. सो फॉर योर ग्रोसरी नीड्स, फॉर योर शॉपिंग नीड्स, अगर आपको अपना पूरा ग्रोसरी कबर्ड फुल करना है तो जाइए ग्लोबल फ्रेश में.
0: और करण कनेक्ट इलेक्ट्रिकल, याद ये नाम भी याद रखिए. हम अभी इनसे बात कर रहे थे. अभी इनका नया वो है क्योंकि कहते हैं न्यूजीलैंड में 1% ऑफ द जो न्यूजीलैंड के पीपल है दे ओन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक गेट, ऑटोमेटिक गेट, ऑटोमेटेड गेट. सो आपको भी अगर 1% में शामिल होना है तो डेफिनेटली करण कनेक्ट इलेक्ट्रिकल है, जोन जी को आप संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ साथ इवेंट्स के लिए आप इधर क्राइस्टचर्च में साउंड सिस्टम की तलाश में है, लाइटिंग की तलाश में, एक अच्छे डीजे की तलाश में, तो डीजे गिडियन is the name. और कुछ कुछ लोग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं.
1: धर्मेश देसाई जी, आपका हम स्वागत करना चाहते हैं.
0: ओ अंकल जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम. पहले को ना कैसे हैं आप? दैट्स दीप्स डैड.
1: ओ अंकल, कैसे हैं आप? आपकी छोटी कितनी प्यारी है, गुड़िया कितनी प्यारी है. गीता इन्ना उंडे सुघाणो, वेलकम टू रेडियो केजे लोकल. अश्नील आशीष कुमार, आपका भी हम रेडियो केजे लोकल पर स्वागत करते हैं.
0: वो ज्योति की दोस्त टिकटॉक स्टार ना.
1: ये
0: वो ज्योति भी आ गए. ज्योति इज लुकिंग ऑसम. अरे पहली बार लाइफ सेंटेंस में ज्योति ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया, बहुत बोला है. थैंक यू ज्योति. हाथ जोड़ के उसको थैंक्स कर देते. आपको तो बोलते ना हमेशा, मुझे नहीं देती ना कॉम्प्लीमेंट.
1: तो फिर हम क्यों हाथ जोड़े? आप हाथ जोड़ो. पहली बार मिला है ना.
0: और कुछ लोग अश्नील आशीष कुमार जी आप भी है, संजीव भगवानी जी आप भी हमारे साथ है. चले गीत में चलते हैं जबकि आप हमारे साथ शामिल हो जाते हैं. कुछ नए कुछ पुराने नगमे हम लेकर आते हैं और आज फ्राइडे होले होले चल रहे हैं तो गीतों को ऐसी हम बारिश कर रहे हैं जैसे बाहर बारिश हो रही है, अंदर भी गीतों की प्यारी और मधुर बारिश हो रही है. लिस्टिंग टू रेडियो के जेलोकल
1: ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया 96.9.